0: सब पाप हरता गुरुदेव पतत पतत करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उतरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव
1: जाके मन गुर की प्रतीत तह जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिया तन लोह जाके हृदय एको होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत सची दृढ़

सचा अकार सच वर्ते सच आविसार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग कुछ त्रै गुण ते प्रभु पहना तिसे बुझाहे नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपति अविनाशी प्रभु मन में राख अनह की तू प्रतीत त्याग तस्ते परे नहीं कुछ कोहे सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गहीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा नदान दयाल बकसंद साध तेरे की चरनी पाहो नानक मन ही अनराहो मन सा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र भोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए करता कै राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर ग्रस्त में भोगी त्याहे तह भगतों सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया जा की लीला की मतना है सगल देव हारे अवगा है पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोही अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन देहे जन दास नाम त्यावें से तै गुण में जाको परमाहे जन मरे फिर आवे जाए ऊच नीच तस्के स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नन्ना रूप नन्ना जा कह रंग हो नन्ना पेह करें एक रंग हो।

कह सोच कर है पुरानी जप नानक प्रभु लख ओढ़नी वार वार बार प्रभु जपिए पी अमृत ए मन तंत्र पिए नाम रतन जन गुरमुख पाया तस्को सी अपर नहीं दसटाया नाम तन नामो रूप रंग हूँ नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृपतन नह मन तन नाम है नाम समान है उठत बैठत सोबत नाम महूँ कौ नानक जन के सदकाम बोलो जह जह बादन रात हूँ प्रभु अपने जन किन्नी दात करे भगत आत्म कह चाहे प्रभु अपने सो रहे समाए जो हुआ होपत सो जन है प्रभु अपने का हुक्म पछान है तस्की महिमा कौन बिखान हूँ तस्का कौन कह एक न जाना हूँ आठ पह प्रभु बसे हजूर है कौ नानक सोही जन पूरा है मन मेर है तन होटल है मन तन अपना तन जन वे जन जन अपना प्रभु पुछाता हूँ सो जन सर्व फो कहा दाता तस्की सर्म सर्व सुख पावे है तस्के दर्शन पाप मटावे है अबर सियाण बसगली शाड़ हूँ तह जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो भी तेरा नानक तह जन कह पूजा हूँ सत पैरा सलोक सत परख जन जान हूँ सतगुर तिसका ना हूँ तिसके संग सिख उतरे नानक हर गुण गाऊँ अष्टपति सतगुर सह की करे प्रतपाल हूँ सेवक को कर सदा दयाल सहकी गुर दुरमत मल रह गुरबचनी हर नाम उचरह सतगुर सह कह बंधन काट है गुर का सिख बकार हट है सतगुर सह को नाम तम दे गुर का सिख बड़ भागी है सतगुर सह का हलत पलत सुवार है नानक सतगुर सह को जी नाल सुमार है गुर कह ग्रंथ सेव को जो रह गुर की आज्ञा मन मह आप सकोह कर कुछ ना जुना वह हर हर नाम

जगत के ईसा पोहपन बृहद गगन ते पही सब हिणयान बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा अखल भवन के सिरजन हारे दास जान मोहे ले होयो बारे कबियो बाज बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो

उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजानन आप सवारी

तत्काल कृपा दृष्टि तन जाए निहर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मों सब।

नरके रहे। हो जो जाकी एक बार चाहो पई को कह चाहो पई। संबद सतरह सहस पनिह जय अर्ध सहस फुण तीन कह जय। भाद्रव सदी अष्टमी रव तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल जवर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे वड़पागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो सामदे दीवाना विच जो सतगुरां दी पावन बाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है ओ विचार आपां सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस पावन शब्द दी विचार चल रही है वो पावन शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

जल तो वे बोधे अनीत शुद्ध गावे काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उदरे पत मूच बहुत सियाण जमका पाओ व्यापै अनेक जतन कर त्रिशन्ना त्रापै भेख अनेक अगन बुजै कोट पाप दरगै नहीं सिजै छूट सनाही ऊब पयाल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान हर का नाम जब दुख जाए नानक बुलै सह सुभाए चार पदार्थ जेको मांगे साथ जना की सेवा लागे जेको आपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सत गावे जेको अपनी शोभा लोरै सा संगे होमै छोरै जेको जन्म मरण ते डरै साथ जना की सरणी परै जिजन को प्रभु दर्श प्यासा नानक तांके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान सासंग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने निचा सऊगनिया सब ते ऊचा जाका मनो ये सगल की रीना हर हर नाम दिन घटगड़ चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखा है सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन समदृष्टिता नानक पापन नहीं लेपा निर्धन गौ धन तेरो नाम ने थामे को नाह तेरा थाओ ने माने को प्रभु तेरो मान सगल घटांको देवो दान करन कराम नहार स्वामी सगल घटांके अंतर जामी अपनी गत में जानो आपे आपन संगा प्रभु राते तुमरी उस्त तुम ते होए नानक वरना जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में ऊतम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में

भगवंत। सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी, तुम ते हुए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक। दीन हार प्रभु छोड़ गए, लागे आन सुवाए, नानक हूं ना सीजई, बिन नाम पथ जाए अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक बस्तकार मिखोट गवावे, एक पीना दे दस भी हरले तो मूड़ा कहो कहा करे।

ज्ञानी की सब पर माया, ब्रह्म ज्ञानी थे काश बुरा ना भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सामदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दुष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्मज्ञानी का बसे ब्रह्म संग ब्रह्मज्ञानी का नाम आधार ब्रह्मज्ञानी का नाम प्रवार ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्मज्ञानी अहम्बल त्यागत

ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी का है सगल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश।

ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सत जीवै नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जीगा दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब प्रहाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्मज्ञानी आम निरंकार।

भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मंदे बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल कराय नत नीत मंत्र अर्पय बिशन प्रीत हरके चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै।

अवतार सर्व रोग औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहो जुगत के ना पाइय धर्म नानक तस्मै सिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तसनदरी आया दाद संतन पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गए परवान अपने दास को आप कृपा करा तिस दास को सब सो जी पर सगल संग आत्मो दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हिताव जीवन मुक्त सौ कहावै तैसा हर्ग तैसा सोहग सदा अनंत नहीं व्योग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा मृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरता हे साई जुगत नानको पुरकये जीवन मुक्त पार ब्रह्म ने सगले ठाऊ जिस जिद कर राखे तैसा तिन्नाऊ अपे करण कराम जोग प्रभावे सुभन होगा।

अवदान प्रकार अष्टपदे कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बान भ्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट को कब का विचारे कई कोट नपतन नाम ध्यावे नानक करते गंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंत अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभिगा तमने कोर कई कोट पर दर्ब को हिरे कई कोट पर दुख ना करे कई कोट माया शरम माहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे अरस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख न बजाए कई कोट पवन पानी बै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखियत्र कई कोट देव दानव इंद्र शेर शत्र सगल समग्री अपने सूतारे नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सत कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई कोट किए रतन समंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सूकर मृगाच सबते नेरा सब हूते दूर नानक अलिप तरिया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरक निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बाजूनी फिरे कई कोट बैठ दही खाए कई कोट काले तक पाहे कई कोट किए तनमंद कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब कुछ प्रभु का हाथे कई कोट भय बै रागी राम नाम संग तिन लब लागी कई कोट प्रभु को खो जंते आत्म मैं बार ब्रह्म हंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होय अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार कई बार बसरियो बासार सदा सदा एक एकंकार कई कोट किन्ने बापांत प्रभते ब्रह्माय समात तागंत न जाने को आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवतातम प्रकाश कई कोट तत के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस भी में अमर भय सासादी जी में कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समा में अपने जन को सा सा संभारे सा

जाए अष्टपदी मानु की टेक प्रीति सब जान देवन क्या भगवान जिसके दिए रे अगाए भवन दृष्णा लागे आए मारे राखे कुआ मानु कह कृष्णाई हाथ तिसका हुकम भू सुख होए तिसका नाम रा कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघ्न न लागे कोए उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सद व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुवेला कर लह जियो नैनो बेग ठाकुर का रंग सा संग भिनसे सब संग चरण चलो मार गोविंद मिठे बाप जपिया हरबिंद कर हर कर्म सर्व नर कथा हर दुर्गे नानक जल मथा बटभागी ते जन जग माहे सदा सदा हर गे गुन गाहे राम नाम जो करे विचार से तन बंत गनी संसार मन थर मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक को एक बशाने इतुत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तेने निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपने आप सुजे तिसकी जानो दर्शना बुझै सा संग हर हर जस कैत सर्व रोग त्योहार चंद रह तन दिन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण एक उपर जी जन की आशा जिसकी घटी है जम की भाषा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक।

का कोना बहु छ प्रभु के सेवक पूछते उच्छे जो प्रभु ने सेवा लाया नानक सो सेवक दया दस प्रगटाया निकी गिरी मैं कल राखे भसम कराए लसकर कोट लाखे जिसका सासना गाढ़ त्याव ताको राख दे कर हाथ मान जतन करत बाबा अंत के करत बिरथे जात मारे ना राखे अपना कोये सर्व जिया का राख सोहे काये सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभु राख बिडाणी बारंग बार बार प्रभु जपिय भी अमृते मंत्र पिया नाम रतन जन गुरमुख पाया ते शिश अपर नाई दृष्टाया।

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अब्रुभावसा मेद विसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कान सो प्रभ सम्राथ दृढ़ कर गहु नाम अरवथ ए तन संचो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठता में सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को अनित बांचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बजर की हर की सरणी अनुभावी अनुभावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अवखद लाए

अष्टपदी जब कारे काशना दृष्टेता पापुन तब कहते हो तब धारी अपन सुन समात बैर विरोध के संकमात जब जगा वर्ण चिन्ह जाप तब हर सो कहो किसे ब्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तह कांक सुपत परम अपन खेला भरतीजा नान करने हर न दूजा जब होवत प्रभ केवल तहिं तबंद मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन आओ तार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कमन ने डर कमन कत डराए आपन चलता आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा अविनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चेत्र गुप्त किस पूछद लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही पर जा जाय निर्मल पुरख पुरख पा धोता तय बिन मैल कहा कहो क्या धोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीत छल छिद्र लगत गौ की स जय जो स्वरूप जो संग समावै तक से भूख त्रम कम त्रभताव करण करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाए जय सर्व कलापे प्रवीण तय वेद देव कह गौचीन

घर प्रभा पे मिल ले सा संग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत भजन हर के गुण गाओ परांतरण गया स्वाहो आठ पैर प्रापेखो नेरा मिटिया ज्ञान मनसे अंधेरा सुनम दे सिरदे बसाव मन छे नानक फल पाव हालत पल दो रेव सवार राम नाम मंत्र उरत हार पूरे गुरु की पूरी दीखिया जिस मन बसा ते साज प्रीखिया मंत्र नाम जपो लिबलाए दुख दर्द मंते भाव जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगे निभा खेब तुम्हारी काटे कर रखो मन माहे नानक बहुर नाम जाहे तिसे दूर गां को जाय बरे राखन हार त्याय निर्भव जपे सकल भाव मिटे प्रभु कृपा दे प्राणी छुटाए जिस पर राके तस नाही दुख नाम जब तम सु चिंता जाए मिटे अहंकार तिजन को कोई ना पहुचन हार सिर पर ठाडा गुरु सूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट

ष्टपदे शांत अंतर प्रभु ठीठा प्रभु का लागा मीठा सकल समय घाट माहे अनग्रंग नाना दृष्टा हे नाओ निध अमृत प्रभु का नाम देहि मैं सगा विश्राम सुन समाध अनहत नाद कहना जाई आचार्य विस्मा तिन देखया सियाव दिखाए नानत जन सो जी पाए सुवंदर सो बाहर अनंत घटगट व्याप रहया भगवंत तरनमय आकाश भयान सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंधन प्रभद है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म पौन बाणी भय संतर माए चार गुण दसे समाहे दसे भिन्न को ठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद ब्राण सिमृत मैं देख ससियर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभु की सबको बोलाए आप अडोल न कबू डोलाए

सीम है, के सर्वं कली है, के सर्वं दली है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र दान्य है, के सर्वत्र गावन है, के सर्वत्र पाहुण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है,

तेरे मुख दे भुगत है, पर भुगत प्रभा है, सजुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है, भेदी रूप है, समाह तो पराज है, सदा सर्ब साज है, समाहतल सलाम है, सदैव ले अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, उवं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभग त्रिभादे गंजे गादे सुभंग सर्वभागे सो सर्वानुरागे, तिर भुगत स्वरूप है, छेज है, अछूत है,

निवार है। हरि फल सिकान है, हिरासर फिकान है, कलंकं पनास है, सुबहतल निवास है, अगंजल गनीम है, अर जय क्रहीम है, सुबहतल जुबा है, कह साहब किरा है, कह नरकं पनास है, बेहतल निवास है।

क्या चलंग प्रकाश है, के मित्तो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के मित्तो विभूत है, के अमित्तो पसा है, के आत्म प्रभा है, के चलंग नाग है, के मित्तो पांग है, माध पर शांत व प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर बरिया गंज हर नर पर पांजे अन गण प्रणाम मन मन सलाम।

सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से है, खल खंड से है, परते पर है, करुणा कर है, जपा जप है, थपा थप है, कृता कृत है, मृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता मृत है, नारनायक है, खल कायक है, विश्व

तब अवलोक चपेंगे, मानवेंद्र गजेंद्र निरात जावंतर लोक को राज करेंगे, घोड़ स्नान के जात के दान अनेक स्वयंवर साज बरेंगे, ब्राह्मण

देवदृष्ट होई। हे श्रवण हो मेरे हो साच सुनने नो पठाए, साच सुनने नो पठाए, श्री लाए सुनो सत बाणी।

सच सत्य आया ओनी मध्य पैना रखन का सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंधन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीश अगला नित

0: कनी सूतक कन बैलाय तवारी खाहे, नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला।
1: सबो सूतक भरम है।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साधु संगत जीओ अते गुरु चरणा नाल मीडिया राही जुड़ बैठी साधु संगत जीओ आप जी सारे वड़भागी हो तंता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो सतगुरां ने अमृत वेले पावन हुक्म बख्शिया उस दी विचार आपा कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया वो पावन शब्द चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास पिता जी की पावन रसना तो उच्चारण किया होया। बैराड़ी राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 719 720 उत्ते सुशोभित है। सतगुरां ने पहले पदे नूं ही राह दा बंद बनाया है।

ताए ताए कृपण श्रम की नोवा कतर करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा किति काज न आया। कर अवार सुवारी से जा कामन थाट बनाया। संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया। सारो दिन समजूरी करता तै मुसले छुराया। खेद पयो बिगारी न्यायी कर कह काम न आया। पयो अनग्रह प्रजा को प्रभ को तिस हृदय नाम बसाया। साध संगत कह पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां।

निकट जानो प्रभ स्वामी सगल रेन हुए रही साधु संगत हुए प्राप्त ता प्रभ अपना लहिया सदा सदा हम छोर तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा।

सगले दुख पलायन रहाउ, जो मांगे सोई सोई पावे, सेवार के चरण रसायन, जन्म मरण दूहूं ते छूटै।

दास संत प्रसाद वैद्य नारायण करण कारण प्रभेक बाल बुद्ध पूर्ण सुख दाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप तारे अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी कीनी आप रहा जिसके से फिर तिन्ही संभाले बिन से सोग संत

प्रसाद, रूडो मन हर रंगो लोड़ाए, गाली हर निहो ना हो राव। हौ टोंडींदी हौ टोंडेंदी, दर्शन कारण बीथी बीथी पेखा, गुरमिल भरम गवाया है। ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्हो, लिख लिखियो तुर माथे, ए बिद नानक हर नैने आलोए, टोडी महला पंजवा, गर्भ गलड़ो मूड़ो हियो रे, हियो महाराज दी मायो, दीहड़ न्याई मैं फाके उरे राव। कणो कणो कणो सद लोड़ बिन लहने कैठे पायो रे, महाराज रो गाथ गाथ वाहु स्यो, बलड़ो ने वाबड़ो पाए सुंजायो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे, सगले पराजित मिटियो रे, जांको लहनो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गुरवास ना पड़ियो रे। ठोडी महला पंजवा, घर पंजवा, धूप दे को अंकार, सतगुर प्रसाद, ऐसो गुण मेरो प्रभ जी की ना, पंच दुख अरंग रोग आए, तन ते सगल दूर की न रहा, बंधन तोर छोर बिखिया ते, गुर को शब्द में रही हर दीना, रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो, प्रेम गयो मोय हर रंग पीना, पेख्यो लालन पाट बीच खोए, अनद चिता हर खे पतीना, तिस ही को ग्रह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिस ही को तीना। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही करम धर्म जप, एही राम नाम निर्मल हरी तराव, प्राण आधार जीवन धन मोरा, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट घाट तो सा संग मोरा, मन अपने को मैं हर सखा कीत, प्राण आधार जीवन धन मोरा, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट घाट तो सा संग मोरा, मन अपने को मैं हर सखा कीता, संत प्रसाद भय मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीता, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आदि जुगा

शुक्र जी की फतेह। गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापै दिसे दूर, गावे को वेख्या हादरा हदूर, कथना कथी न आवे कोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। गुरु प्यारियो, वी रीड दिस एवरी डे। जपजी साहब महाराज की कृपा नाल सारे गुरसिख रोज पढ़ते ने। गुरमुखा नाल विचार चल रही सी ते क्वेश्चन आया कि महाराज की सानू केड़ा ज्ञान बख्श रहे जदों महाराज कहिंदे गावे को गुण वडियाइयां चार। केड़े चार गुणा की गल महाराज ने कीती है, क्योंकि सानू सारे नू पता है, वी ऑल नो दैट वी आर स्टक इन इल्यूजन, अ माया, अ मैट्रिक्स। ते माया दे विच जदों साडा मन फसिया वै, ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नू जदों पुछया गया ते उन्होंने समझाया, कहिंदे है माया दे तीन रूप ने, जिन्हों महाराज ने गुरबाणी च कहा तेही गुणी संसार भ्रम सुत्ता, सुत्या रहण विहाणी, गुर कृपा ते से जन जागे, जिन हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कहिंदे है तीन गुणा की माया जिहड़ी है उहदी गल महाराज ने सानू समझाई। द थ्री काइंड्स ऑफ माया, द थ्री गुणस, थ्री क्वालिटीज ऑफ माया। ये तिना गुणा नू होर गुरबाणी ने सानू खोल के समझाया, रजो गुण तमो गुण सत्तो गुण कहिए ए तेरी सब माया। कहिंदे माया दे तीन रूप ने, रजो गुण तमो गुण ते सत्तो गुण। हुण रजो गुण दे जदों असीं पढ़ीए होर खोलीए ते रजो गुण च की आउंदा है, वट इज देयर इन रजो गुण। जदों साडा मन रजो गुण दे विच फस जांदा है, वैन आर माइंड इज स्टक इन रजो गुण, ते उहदे च किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां ने? आशा, अभिलाषा, चिंता, फिकर। जदों असीं कोई काम करदे ना गुरु प्यारिओ, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेतीबाड़ी कर रहा है, कोई होर काम कर रहा है, वो आशा, अभिलाषा, चिंता, फिकर, जिन्हों आपां इंग्लिश कह दिंदे आ होप्स, डिजायर्स, विशेज, एंगजाइटी, डिप्रैशन, सारा कुछ आ जांदा है। लेकिन महाराज कहिंदे तू सारा कुछ नहीं लेना, काम ते तू करना है। अगर तू मालक दे गुण गाएगा, गावे को गुण वडियाइयां चार, ते तैनू चार चीजां ही चाहिए। सिर्फ एक चीज तैनू रजो गुण तो चाहिए, एक चीज तैनू तमो गुण चो चाहिए, एक सत्तो गुण च चाहिए। ते अगर तू तीनों चीजां कमाएगा, मतलब समझ लो थोड़ा जा होर ध्यान नाल, रजो गुण दे विच सारा कुछ है, आशा, अभिलाषा, चिंता, फिकर, होप्स, डिजायर्स, विशेस, इट्स देयर, बट वी ओनली वॉन्ट वन थिंग, जिन्हों गुरबाणी सानू समझाया, असीं चलने अगे गल करदे। उदां ही तमो गुण दे विच काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ईरखा, द्वैत, नफरत, निंदिया, चुगली, सारा कुछ, लस्ट, ग्रीड, एंगर, अटैचमेंट, ईगो, स्लैंडरिंग, गॉसिपिंग। साडा मन यही अवस्था दे विच रहिंदा है पूरे दिन च, वेखिए ना, जो काम भी करते हैं, आशा, अभिलाषा, चिंता, चिंता, फिक्र, जो वेले बह जाने तो तमो गुण च चले जाता मन। वैन वी आर सिटिंग आइडल, आवर माइंड गोज इन द तमो गुण, मन इत्थे ही रहिंदा है, बिकॉज दिस अ गेम ऑफ माइंड, मतलब फुरने लैंदा रह रहा, इट इज टेकिंग द थॉट्स ऑल द टाइम, 24 घंटे फुरने लैन डिया मन, सानू पता ही नहीं साडा मन फुरने लैन डिया। ते अगर सानू पता ही नहीं लगना कि केड़ा फुरना आपां लैना है ते केड़ा नहीं लैना, ते मालक नू किद्दां मिलांगे? क्योंकि यह सहज दा मार्ग है, ते सहज दे मार्ग वास्ते सानू शब्द दा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे गुर शब्द दा ज्ञान चाहिए। ज्ञान जदों चाहिए तो वह महाराज कहिंदे गुरु नू पुछ के तू की करना की है,
ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਢਿੰਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ।

खिन खिन साधु चरण पखैया रहाव। तजे गृहस्थ भया बनवासी एक खेन मनुआ टिके ना टिकैया, धावत ताए

प्रभ छोड़ न सके बहुत मन भैया। कहे प्रभ अवर अवर किछ सी की जय, सब बाद सिंगार फुगट फुगटिया। कियो सिंगार मिलन कह ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करे तेरे वस पैया। दया दीन करो रख लेवो, नानक हर गुर सरण सुमैया। बिलावल महला चौथा। मैं मन तन प्रेम ठाकर अगम अगम ठाकर का, खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया। गुर देखे सरदा मन पूरी, ज्यों चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया।

लागे मल। जो देखो तहे कोई काहूर जीव पाए वे को बेका फलो हार किए फल जाए रस कस खाए साध गवाए कूड़े लालच लपटे लपटाए झूठे गुरमुख सच कमाए द्वादश मुद्रा मन अतूता अहनस जागो कवे न सूता जागत जात रहे लिवलाए गुर परचे तिस काल न खाए अतीत पय मारे बहराई परमत नानक तह लिवलाई द्वादशी दया दान कर जाने बाहर पीतर आम बाहर पीतर जातो पीतर आने बरती बरत रहने काम अजपा जाप जपे मुख नाम तीन पवन मैं एको जाने सोब सत संजम साच बिछाने तेरस तरवर समुंद किनारे अमृत मूल शिखर लिव तारे डर मरे न बूढ़े कोय निडर बूढ़ मरे पत खोए डर मह कर कर मह डर जाने तख्त निवास सच मन पाने चौदस चौथे ता थावे लह जा पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर के कर सूर समावे जुग जुग की कीमत पावे चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रह लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गणा गहनार बुझो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन ज्योत लोई कर कर वेखे करता सोई गुरते दिसे तिस सो तिस ही माहे मनमुख फूले आवे जाहे कर दर थाप थिर थान सुहावे आप पछाणे जा सतगुर पावे जह आसा तह बिनस बिनासा फूटे खपर दुबदा मनसा ममता जाल रहे उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा बिलावल महला तीजा वार सत कर दसवाई के ओंकार सतगुर प्रसाद अदित वार आद पुरख है सोई आपे वरते अवर न कोई ओत पोत जग रहे आप रोई आपे करता करे सो होई नाम रते सदा सुख होई गुरमुख बिरला बूझे कोई हृदय जपनी जपो गुण तासा हर आगम अगोचर परम्पर स्वामी जन पग लग त्याव होए दासन दासा रहाओ सोम बार सच रह समाए तिसकी कीमत कहे न जाए आख आख रहे सब लिव लाए जिस देवे तिस पल्ले पाए अगमा गोचर लख्या न जाए गुर के शब्द हर रह समाए मंगल माया मोह पाया आपे सिर सिर धंधे लाए आप बुझाए सोई बुझे गुर के शब्द दर कर सूझे प्रेम भगत करे लिव लाए हमें ममता शब्द जलाए बुधवार आपे बुध सार गुरमुख करणी शब्द विचार नाम रते मन निर्मल होए हर गुण हगावे होमे मल खोए दर सच्चे सद सद सुभा पाए नाम रते गुर शब्द सुहाए लाहा नाम पाए गुरुद्वार आपे देवे देवन हार जो देवे तिसको बल जाइए गुर प्रसादी आप गवाइए नानक नाम रखोर तार देवे देवन हारे को जयकार वीरवार वीर परम पलाए प्रेत भूत सब दूजे लाए आप उपाय कर वेख वेका सपना करते तेरी टेका दी जग तेरी सरनाई सो मिले जिस आप मिलाई शुक्रवार प्रभ रहा समाई आप उपाय सब कीमत पाई गुरमुख होवे सो करे विचार सच संजम करनी है कार वर्त ने अमृता प्रत पूजा बिन बूझे सब भाव है दूजा छनिचर वार सौन शास्त्र विचार हमें मेरा भरमे संसार मनमुख अंधा दूजे पाए दरबदा जामदार वादा चोटा खाए गुर प्रसादी सदा सुख होए सच कारणी साच लिवलाए सतगुर सेवे सेवड़ भागी हमें मार लिव लागी हमें मार सच लिव लागी तेरे रंग राते सहज सुपाए तू सुख दाता लह मलाए कस्ते दूजा नहीं कोए गोर मख बूझे सोजी होए इन पंद्रह तिथि तय सत वार महारुति आवह वार वार दिन सरैन तिवे संसार आवा गौण किया करतार निहचल सच रहया कल तार नानक बुझै को शब्द विचार बला महला तीजा आद पुरख आपे सृष्ट साजे जी जंत मया माया मोह पाजे दूजे पाए प्रपंच लागे आवे जाए मरे अपागे सतगुर भेटे सोजी पाए प्रपंच चुके सच समाए जाके मस्तक लिखिया लेख जाके मन वस्या प्रभ एक रहा सृष्ट पाए आपे सब एक है कोई न मेटे तेरे लेख है सिद्ध साधक जे को कहे कहाए पर मैं भूलावे जाए सतगुर सेवे सो जन बूझे हमें मारे

0: समान के संग न जावे।
1: मौ लचका मनुख ऊपर करे आस,
0: बल भीतर ताका होए विलास।
1: साते आप जाने बलवंत,
0: खिंद में होए जाए पसमांत।

0: ज्योतिष पावे सोई थिया।
1: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
0: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए।
1: संत का दुखी सदा सहकाइए,
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए।
1: संत के दुखी की पूजे ना आसा,
0: संत का दुखी उड़ चले निराशा।
1: संत के

0: अविनाशी सुख आपन आसन
1: तै जन्म मन को कहां विनाशन
0: जा पूर्ण करता प्रभु सोए
1: तब जम की त्रास कहो किछ होए
0: जा अवगत गोचर प्रभु एका
1: तब चित्र गुप्त के

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए। फिरंगत गुरते अमरदास राम दासे होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करना उन दे आवे ताई सब थाई होए सहाए। दसवां बादशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाए। दसां बादशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुकतियां शहीदां अमरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपिया वंड की छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तानारिया नाल चरवाए सिखी सिदक केसां सवासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेता वे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचा रहा है देग तेग फतेह। बिरद की पैज रहे पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान बबेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चमकियां चंडे बुंगे जगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दातार दियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दे माण सतगुरु नेताणियां दे ताण नेउटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अरदास बेनती है। आप जी दीआं रहमतां सदका पावन हजूरी विखे दीवान सजे सजे होए दीवानां विच शहीदां दे सरताज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे शहीदी पुरब दे संबंध दे विच समूह संगतां वल्लों अमृतमई बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ कीते सतगुरु चौपे जी के पाठ उपरंत शब्द कीर्तन होए बाणी पढ़दियां होईआं पुल्लां दी खिमा बख्शनी अगों वास्ते समत बख्शना अमृतमई बाणी दा पहाओ दर आईआं संगतां दे हिरदिआं च वसावणा सरबत दीआं तिल फुल पेटावां दर प्रवान करनियां दरों करो नाम दान सिक्खी सिदक भरोसे की दात बख्श के करतार्थ करना। अज दे श्री सुखमनी साहिब दे पाठां की सेवा गुरसिख परिवारों वालों होई दर करदे सेवक भाई लखविंदर सिंह जी बीबी जी नरिंदर कौर वालों अपने बेटे तरनदीप सिंह की तंदुरुस्ती चढ़ती कला वास्ते सबू परिवार की सुख शांति लिए आप दे चरणा का ओट आसरा लिया सतगुरु की रहमत करनी शीश ते रहमतां भरे हथ रखना दे अरोगता की दात बख्श के करतार्थ करना समू परिवार नूं दरों करो नामदान सिखी सिदक भरोसे की दात बख्श के करतार्थ करना आप दे दर कर दे सेवक काका चरणजीव सिंह दे जन्मदिन की खुशी अंदर परिवार वालों चढ़ती कला वास्ते अते तंदुरुस्ती लिए अरदास बेनती है सतगुरु जी मेहर करनी बच्चे दे सिर ते रहमतां भरे हथ रखना चढ़दियां कलां की दात बख्श के करतार्थ करना अंग संग सहाई होना दर कर दे सेवक भाई महेंद्र सिंह जी अटवाल समूह परिवार वालों सरदार राजविंदर सिंह अटवाल जी की मिठी प्यारी सलाना याद मनाउंदिया होया सेवकां वालों अमृतमई बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ अते कीर्तन करवाए सतगुरु जी रहमत करनी विछी आत्मा नूं सदीवी काल वास्ते अपने चरणा कमलों च निवास बख्शना परिवार के सिर ते रहमतां भरे हथ रखना दरों करो नाम दान सिखी सिदक भरोसा दान परिवारां विच सुख शांतियां प्रदान करनियां अंग संग सहाई होना सेवकां दी काल थाएं पौनी अंग संग सहाई होना आप जी दर करदे सेवक सरदार नछत्र सिंह जी सिद्धू समूह परिवार वालों सुरिंदर कौर सिद्धू की याद विच आप जी दे चरणा का ओट आसरा लिया सतगुरु जी मेहर करनी विछी आत्मा नूं सदीवी काल वास्ते
ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਸਭੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ। ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪੜਦੇ ਟੱਕਣੇ, ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਹੂ ਚਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੀ ਬਚੀ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੀ ਸੋ ਉਤਰੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੀ ਮਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ।

जाए रागे ना दे बाहर इने हुकम ना बुझा जाए नानक हुकम बुझे तना रासोए सतगुर ते सोजी पाए सब किस तिसे होया जो तिसै धीर जाए सतगुर विच अमृत नाम है अमृत कह कहाए गुरमति नाम निर्मलो निर्मल नाम त्याए अमृत बाणी तत है गुरमुख वसै मन आए हृदय कमल परगासिया ज्योति ज्योत मिलाए

कमाए। गुरु शरणाय उपराय नानक लय चढ़ाए, सदगुरु पुरखा हर त्याए, दासा संगत सदगुरु पाए। सत्संगत सदगुरु सेव दे हर मेले गुरु मेलाए, एह पवजर जगत संसार है गुरु बोहित नाम तराए। गुर सिखी पाणा मन्या गुरपुरा पार लंघाए, गुर सिखा की हर तूड़ दे हम पापी पीगत पाहे। तुरमस घर प्रभ

जाए। सोरठ सोरस विदिय कब न फिका होए, नानक राम नाम गुण गाय दरगाह निर्मल सोए। जो प्रभु रखे आप तिन कोय न मारे, अंदर नाम निदान सदा गुण सारे। एका टेका गम मन तन प्रभ तारई, लगा रंग पार को न उतारे। गुरमुख हर गुण गाए सह सुख सारे, नानक नाम निदान हृदय उर हारई।

तीर्थ नावा जित पावा अपन पान के नाए करी जेते सिरठ उपाय वेखा विण करमा क्या मिला लई।

असंग रनम कुवेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सत्य असंग दातार असंग सूरम पाख सार असंग मोल लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार ज्योत भाव।

आनंद गुर ते जाणिया। बाबा जिस तू देह सोई जन पावै, पावै ता सो जन देह जिसनो, होर क्या करे विचारिया। एक भरम भूले फिर है दह दिस, एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिना पाणा पावे। कह नानक जिस देह प्यारे, सोई जन पावे। आवहो

कर्मी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा ना जाए नह जाए सहसा कित संजम रहे कर्म कमाए सहस जियो मलीन है कित संजम तोता जाए मन तो वहो शब्द लग हो हर सो रह हो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एहो सहसा इव जाए जियो मैले बहर हो निर्मल बहर हो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनहो विसारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यो बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बहर हो निर्मल बहर हो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुँचै नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले से बन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रह गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मा समाले आप छड सदा रह परण गुरबिन अवर न जान कोए कह नानक सुनहो संत हो सो सिख सनमुख होए जे को गुर तेवे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थै कोई पुछ हो बिबे किया जाए अनेक जूनी भरम आवै विण सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो हो विण सतगुर मुक्त न

पड़ाओ। शिव सकत आप उपाय कै करता, आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुकत, शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक सस्यों लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार न जानी, तत्तै सार न जानी गुरु बाज हो, तत्तै सार न जानी। तिही गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रहन विहानी, गुर किरपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए, जिसनो अनदिन हर लिव लागै, जागत रहन विहानी। माता के उदर मह प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारिया, मनो क्यों विसारिया ए वड दाता, जे अगन मह आहार पहुँचावे, ओसनो केहो पोहे ना सकी, जिसनो

दिन सुभागे आपना पिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए कै क्या तुद